0: up. I don't wanna lose you.
1: I don't wanna lose you.
0: I don't wanna lose you.
1: I don't wanna lose.
2: I don't wanna lose you.
0: I don't wanna lose you.
1: I don't wanna lose.
0: I don't wanna lose you. 'Cause you mean too much. Said you mean too much. Hey.
3: ये पंजाबी बोली जड़ी है बड़ी कमाल है। मैं ना बच्चियाँ नू कहता हूँ ना यार कि बच्चों तो नू सारा कुछ मिल सकता है इस देश में, पर पंजाबी माँ बोली दी गोदी, ओदी गोदी वेज पाई वीर सिंह बैठे, ओदी गोदी दी वेज, एक एक विद्वान बैठे या मुझे तो पाई वीर सिंह में पढ़े ओ सीने फिट जाने खाती, ओ कार आराम नहीं बैठे, नए वाले नैना की नींद, ओ दिने रात बैठे, इनको लगन लगी नहीं जानी है टोर अनंत ना दी, बस लो बुरे मुकाम ना पूरी सो चाल पे इंद्रे, इंग्लिश विच मजूबा, कदम नहीं मैं सकता ना।

0: The difference is the music.
1: Swan 99.9.
2: ऐसी गाना कहीं दीप जले कहीं दिल। फिल्म सी 20 साल बाद 1962 च बनी हुई फिल्म। हेमंत कुमार रॉय ने उदा लिखा नावल, नावल दे बेस ते फिल्म बनाई सी, उन्हों डायरेक्ट कीता सी, गाने भी उन्हें कंपोज किते। ये गाना लता मंगेशकर ने गाया सी। लता मंगेशकर ने उस वेले गाना गाया सी जदों लता मंगेशकर दे वोकल कोड जिहड़ी गले दे विच कुछ नुक्स चल रहा सी, ते लगदा सी कि शायद वो गाने हुण ना गा सके। ते जदों ये गाना तीन वारी गाया ते वो गल ना बन सकी, ते फिर लता मंगेशकर ने हिम्मत कुमार नूं कहा सी कि किसी होर कलाकार नूं लै लो गाना गाउण वास्ते, ते उहदा लगदा सी कि गला जिहड़ा ठीक अजय नहीं होया, शायद ना हो। पर फिर इस तो बाद जिले नैक्सट इनटेक तो बाद जिहड़ा गाना उन्हें गाया जिदा वह फिल्म से चाहिए सी उस तरीके गाना गाया, तो लगता कि इस गाने नाल फिर मुड़ के लता मंगेशकर दी इस गीत संगीत की दुनिया से वापसी हुई सी। 20 साल बाद के 20 साल के बाद की हुंदा फिल्म जिहड़ी आ बहुत वधिया च वहीदा रहमान, विश्वजीत मदनपुरी इन्होंने काम किया और काफ़ी फिल्म चली सी, गाने बहुत बढ़िया सी, सस्पेंस चलता सी और फिल्म देखने वाली है नहीं देखी तो जरूर देखने वाली पुरानी फिल्मों के पिछों एक फिल्म 20 साल बाद। चलो वह गाना सुनते हैं।

ऐसी फिल्म चो गीत कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आके परवाने। तो सुन रहे अपना मन पंदा पंजाबी गीत पर मिला कितना सवार 99.9 FM तो श्याम कुमार दे नाल। चलो अगे एक होर गीत सुन रहे हैं।

0: 99.9.
1: The difference is the music.
2: So, Lala Kvarga suit leke aayi. Te kurte pajame bhi ode pasand de rang de paunda. So, eh rangan di ardaan pardaan is geet che. Agge kahani sunde haan pension. Dekhde haan ke kalakar is kahani vich ki likhna chahunda si te ohnu kidda pesh kita. कहानी सुन दे
3: तुसी सुनोगे गुलजार सिंह संधू होरां दी लिखी कहानी पेंशन दिलीप कौर नू अपने वड्डे पुत्तर चरण सिंह को आया 6 महीने हो गए सन चरण सिंह दा इको एक बच्चा वड्डा हो रहा सी मां ने जने पर छुट्टी कट के अपने दफ्तर हाजिर होना सी बच्चे नू सामण दा काम दिलीप कौर ही कर सकदी सी बाप भी नौकरी करदा सी मापे बच्चे दी जिम्मेवारी घर विच कम करन वाली सेवादारनी नू नहीं देना चाहुंदे सन व्याह तो 10 साल पिछों होया इह उहनां दा पहला बच्चा सी मसां मसां दी दाद बच्चे पालना दिलीप कौर लई औखा नहीं सी उहने अपने पंज धीआं पुत्तां तों बिना पिंड विच रहिंदिआं अपनी छोटी नूं दे दो बच्चे पाल के वड्डे कीते सन छोटी अध्यापका सी ते उस नूं जनेपे छुट्टी तों बिना होर छुट्टी नहीं सी मिलदी जिथे छोटी नूं पिंड दे स्कूल विच अध्यापका सी वड्डी शहर दे डिग्री कॉलेज विच मनोविज्ञान दी प्रोफेसर उसदी विद्या ने उस नूं वड्डी उम्र वालिआं नूं खुश करन दे ढंग तरीके दसे हुए सन उंज वी पंजाब तों नहीं दक्षिणी भारत तों सी केरल तों दिलीप कौर नूं भावें शहरी जीवन ठीक नहीं सी लगदा पर वह अपने पुत्र तिनू दी मजबूरी नूं समझदी सी उसने अपने आंढ गुआंढ विच अपने वर्गियां दो औरतां लभ लईआं जिन्हां नाल वक्त मिलण ते वह अपना दुख सुख फोल लैंदी सी दादी दी देखरेख विच बच्चा भावें ठीक पल रहा सी पर फिर भी बच्चे दी मां अपने मसां मसां प्राप्त होए बच्चे नूं अपने ढंग नाल पालना चाहुंदी सी पिंड तो यह दिलीप कौर इन्नी सांभ संभाल विच यकीन नहीं सी रखदी 6 महीने पिछों वड्डी नूह ने बच्चे की चंगी देखभाल वास्ते सेवादारनी लभ ली वह दिन विच 3 वारी बच्चे नूं देखण आउंदी सी शहर के बच्चों की देखभाल का अनुभव रखण वाली इस सेवादारनी का मां की देखभाल नाल टकराव होना कुदरती सी वह जदों भी समां लगदा नूह कोल दादी दी शिकायतां लाउण लगदी समा पा के सेवादारनी ये भी सोचन लगी

0: आगे आगे चल दी रैगिंग करिए।
1: और तेरा दिमाग खराब है मामा, रैगिंग का स्कूल को भी बंद हो गई है। तू टीवी देख रहा फिरता, इन्हें इंप्रेस कर दे एक मिनट जरा।
0: ओए अक पानती है।
1: हेलो स्वीट हार्ट, व्हाट इज योर नेम?
2: योंकी, यू आर टॉकिंग टू मी? यू टॉकिंग टू मी? मेरे बारे गल करते हो?
0: अरे हाँ हाँ हाँ, पीड़े से बट्टे बड़ी तरह नाम किया। हाँ
2: क्योंकि मैं हाँ टांगे वाली चन्नो, मोर बना देंगी फड़के कन्नो।
0: ओए बैठो, मटर दी आंदा टाइम हो गया। ये
1: हमारे पे रहते के

0: 빼야지.
1: जे
2: हुण ओ साडे पिछे पै गया हाथ मेरे ओदा भी बड़े खुले है आ तेरी
1: चल नी तू रहन दे तेरे को बचा नहीं जाना